ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। मगरबी जापान के नारा शहर में बुध के रोज बहुत से लोगों ने उस मकाम पर फूल रखे जहां साबिक जापानी वजीर आजम आबे शिंजो को 4 साल कबल इंतखाबी मुहिम की तकरीर के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। फायरिंग का ये वाकया 8 जुलाई 2022 को यामातो साई दाईजी स्टेशन के करीब पेश आया था। क्योतो शहर से ताल्लुक रखने वाले 60 के बेटे के एक शख्स ने यादगारी चबूतरे का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आबे जापान के लिए एक अच्छे रहनुमा थे और ये कि उन्होंने अनजानी वजीर आजम से दरख्वास्त की थी कि वो मुल्क का ख्याल रखें। क्योतो ही से ताल्लुक रखने वाले 20 के बेटे के एक शख्स ने कहा कि 4 साल तेजी से गुजर गए। उन्होंने मजीद कहा वो चाहते हैं कि अगली नस्ल ये जान ले कि एक सियासतदान को तशद्दुद के जरिए कत्ल किया गया। जनवरी में नारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 45 साल यामागामी तत्सुया को साबिक वजीर

0: वो माफ कीजिएगा,
1: थेबुक्रो का हो शीन देस गा।
0: मुझे दस्ताने चाहिए।
2: दुकानदार जवाब देता है,
3: थेबुक्रो वा कोचिरा देस।
0: दस्ताने इस तरफ है।
2: मिया एक किस्म के दस्तानों की जानिब इशारा करके कहती है,
1: कोरे अत्तकसो।
0: ये काफी गर्म मालूम होते हैं।
2: ताम दस्ताने पहनकर देखती है और कहती है,
1: ई देस ने।
0: अच्छे हैं।
1: कोरे इकुरा देस का?
0: ये कितने के हैं?
2: दुकानदार जवाब देता है,
3: 1900 येन देस।
0: 1900 येन के हैं।
2: ताम पूछती है,
1: कार्ड वा त्साएमासु का?
0: क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है?
2: दुकानदार जवाब देता है,
3: हाय त्साएमासु।
0: जी हाँ, इस्तेमाल किया जा सकता है।
2: होक्काइडो में सर्दियों के मौसम में दर्जा हरारत अक्सर 0°C से नीचे चला जाता है। ताम ने गर्म दस्ताने खरीद कर बहुत अच्छा किया।
0: तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
1: अनो सुमिमासेन, थेबुक्रो गा होशीन देसु गा।
3: थेबुक्रो वा कोचिरा देसु।
1: कोरे अत्तकासो। ई देसु ने। これいくらですか
3: ？1900円です。
1: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मुझे दस्ताने चाहिए।
1: थेबुक्रो गा होशीन देसु गा।
2: अगर आप इस अंदाज को याद कर लें तो इसे कोई भी चीज खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: थेबुक्रो यानी दस्ताने और होशीन देसगा के मायनी है चाहिए। अब आज का नुक्ता, जब आप कोई चीज खरीदने जाएं और चाहते हैं कि दुकानदार वो चीज दिखाए तो उस चीज के नाम के बाद गा और उसके बाद होशीन देसगा लगाएं। होशीन देसगा ये इसमें सिफत होशी यानी चाहिए के बाद न देसगा लगाकर बनाया गया है। न देसगा अपनी बात की वजाहत के साथ साथ इस बात का इशारा है कि आप मुखातिब से किसी जवाब की तवक्को रखते हैं।
2: तो मकालमे की सूरत हाल में थेबुक्रो यानी दस्तानों के बाद गा और फिर होशीन देसगा यानी चाहिए लगाकर बनाया गया है थेबुक्रो गा होशीन देसगा, यानी एक तरह से ताम दुकानदार से कह रही है कि मुझे दस्ताने दिखाएं। ऐसा ही है ना?
0: जी बिल्कुल ऐसा ही है।
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए जुमले के आखिर में लहजा धीमा कर लेना बेहतर तासुर देगा।
4: होशीन देसगा, थेबुक्रो गा होशीन देसगा।手袋が欲しいんですが。
2: じさめん、やきなら、あの、ジュムロコムデギセドハラリアホガ。
0: オラベグドカンメガハコドカンダーケダミアンホネワラマカルマソニエ。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: あ、いつもカルメキトシリ。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: わ、マフキジェガ、ムジェ北海道キソガッチャヒエ。
0: あの、イキシコムトワジェカネキリストマーキアジャネワララフセ。お土産、ケマニヘキシーラケキソガッ。アガラプコサマジナーリーホケサファケマカムセキャトファレジェン、トドカンダーシージムラケナベタホガ。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: あっちゃ、いつもたいけばれめきゃかやれ。
0: そうですね。いえ、くさるこいむなしゅじわぶそちねげどらんかはじゃたへ。このお菓子、やにいえみたい、あいかがですか？きしちいすきすばりしきりかはじゃたへ、やにいえちいすけしりへぎ、やしいすけばれめきゃかやれ。
2: とそにえおどはらいえ。
4: おみやげがほしいんですが。北海道のおみやげがほしいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: おみでやっぱちたらましかりほぎ。
0: あぶ、いしんだすきくしおましけん。ファルスカレアブがりばんねわらりばいてジャパニルマーハリダチャテヘ。と、どかんだしばきすたらかへんげ。ジャパンケウスリバイティバレルマーコケテヘ。
4: ふろしき。ふろしき。
1: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: और अगर आपको छतरी चाहिए तो दुकानदार से कैसे कहेंगे? छतरी की जापानी है
4: कासा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 8 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खबानों से सुने समाचार। अमेरिका की केंद्रीय कमान का कहना है कि उसने ईरान पर कई शक्तिशाली हमले किए हैं। उसका कहना है कि ये हमले

एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि यह समझौता ज्ञापन पूरी तरह से ईरान के रवैये पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जल डमरू मध्य में ईरान की हरकतें अस्वीकार्य हैं और इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन ईरान का कहना है कि समझौता ज्ञापन का उल्लंघन अमरीका कर रहा है। विदेश उपमंत्री काजेम गरीबाबादी का कहना है कि हमले और लाइसेंस रद्द करना समझौते के खिलाफ हैं। उन्होंने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगा। नाटो के नेता दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की पहुंच गए हैं। बैठक से पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने नेताओं का स्वागत किया और पहले दिन राजधानी अंकारा में प्रीति भोज का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले उन्होंने ट्रंप से मुलाकात भी की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में नाटो सहयोगी अमेरिका का समर्थन करने में विफल रहे हैं। उक्रेन की स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उक्रेन और रूस समझौता करके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बैठक से इतर आयोजित एक रक्षा मंच को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक ये संघर्ष जारी है, कृपया हमें और अधिक वायु रक्षा मिसाइलें हासिल करने में मदद करें। इस समय यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, बाकी सब हम स्वयं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप को भी प्रभावशाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रणालियों की आवश्यकता है। तुर्की के अंकारा में मंगलवार को नाटो शिखर सम्मेलन से इतर एक बैठक में जापान सरकार ने नाटो और उसके चार हिंद प्रशांत साझेदारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। इस बैठक में नाटो के महासचिव मार्क रुते, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योन, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मंत्री, जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो सहित कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रुते ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की उम्मीद जताई। मोतेगी ने कहा कि यूरो अटलांटिक और हिंद प्रशांत क्षेत्रों की सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है, जैसा कि उक्रेन में रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य सहयोग से स्पष्ट होता है। कोइजुमी ने यह भी कहा कि अब कोई देश अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकता और नाटो के साथ सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा है। प्रतिभागियों ने रक्षा उद्योग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नाटो और चार साझेदारों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: पश्चिमी जापान के नारा शहर में बुधवार को कई लोगों ने उस स्थल पर फूल अर्पित किए जहां 4 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो की चुनावी भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना 8 जुलाई 2022 को यामातो साइदाइजी स्टेशन के पास हुई थी। क्योतो शहर से आए करीब 60 साल के एक व्यक्ति ने स्मारक वेदी पर नमन किया। उन्होंने कहा कि आबे जापान के लिए एक अच्छे नेता थे और उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री से देश की रक्षा करने की प्रार्थना की। क्योतो के ही रहने वाले करीब 20 साल के एक युवक ने कहा कि 4 साल बहुत जल्दी बीत गए। उन्होंने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को पता चले कि एक राजनेता हिंसा के शिकार हुए थे। नारा क्षेत्रीय न्यायालय ने जनवरी में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के आरोप में 45 वर्षीय यामागामी तेत्सुया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इस मुकदमे में सजा की गंभीरता और यामागामी के पालन पोषण को कितना महत्व दिया जाना चाहिए जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उसकी मां द्वारा यूनिफिकेशन चर्च नामक एक धार्मिक समूह को दी गई भारी दान राशि के कारण उनका परिवार

0: आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। अनुमान है कि दूसरे मुकदमे में भी ये एक अहम मुद्दा बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी जापान के ओकिनावा प्रीफेक्चर के निकट शुक्रवार से शनिवार के बीच एक विशाल और भीषण तूफान आने की आशंका है। इसे देखते हुए जापान के मौसम अधिकारियों ने वहां के लोगों से तैयारी करने का आग्रह किया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि बुधवार सुबह 6 बजे तक समुद्री तूफान बावी फिलीपींस के पूर्व में समुद्र के ऊपर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा था। आशंका है कि तूफान अपनी ताकत बरकरार रखते हुए ओकिनावा के साकीशिमा द्वीप समूह के करीब पहुंचेगा। शुक्रवार को साकीशिमा द्वीप समूह पर हवा के अंधड़ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। इतनी तेज आंधी मकान गिरा सकती है। इस क्षेत्र में ऊंची लहरें और समुद्र का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ चेतावनी स्तर की भारी वर्षा और तूफानी लहरें भी देखने को मिल सकती हैं। 3 जापानी कंपनियों ने बायोडीजल चालित ट्रकों द्वारा लंबी दूरी तय करने से जुड़े परीक्षण की घोषणा की है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब लॉजिस्टिक्स कंपनियां पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में इस ईंधन का इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रक निर्माता इसुजू मोटर्स, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम डेवलपर T2 और ऊर्जा कंपनी इदेमित्सु कोसान इस परियोजना में शामिल हैं। परीक्षण इस वर्ष गर्मियों में कानागावा और ह्योगो प्रीफेक्चरों के बीच 500 किलोमीटर लंबे मार्ग पर शुरू होंगे। कंपनियां ये पता लगाना चाहती हैं कि हल्के तेल की तुलना में बायोडीजल ट्रकों की ईंधन कुशलता और टिकाऊपन को कैसे प्रभावित करता है। कंपनियों का कहना है कि उनका बायोडीजल खाना पकाने के इस्तेमाल शुदा वनस्पति तेल और अन्य सामग्रियों से बनाया जाता है। उनका ये भी कहना है कि ये ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाने में मदद कर सकता है। कंपनियां बायोडीजल की अपेक्षाकृत अधिक लागत कम करने के लिए इसका उपयोग बढ़ाने के तरीके तलाश रही है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।